0: Radiation, the number one station for the boggle for the Asian. Boggle Asian.
1: क्या हुआ बेटी? क्या बात है?
2: अंकल, अब वो विशाल प्लॉट नंबर 13 में फंस गया है।
1: क्या हुआ विशाल को?
2: अंकल, वो औरत नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। अंकल, अगर विशाल को बचा लीजिए, नहीं तो डायन उसे मार डालेगी।
1: अच्छा, अच्छा, एक मिनट।
3: इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग।
1: देखिए, मैं गुलमोहर लेन प्लॉट नंबर 12 से सक्सेना बोल रहा हूँ। यहाँ प्लॉट नंबर 13 में एक औरत मेरे बेटे को मार देना चाहती है।
3: क्या कहा? प्लॉट नंबर 13?
1: जी हाँ।
4: प्लीज जरा जल्दी आइए।
3: हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
2: चलिए अंकल।
0: देव, रिस्पेक्ट टू यू ब्रो। प्लॉट नंबर 13, प्लॉट नंबर मेरा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट, नंबर मेरा। बट या, प्रेस द बटन करेक्टली। दिस ट्रैक Verdian, the last track. Got a message coming. Wang, Lundi the Bawa, Desi Crew, Bunty Baines, on My Roots. This track over here, Verdian, which just means enemies. Explicit lyrics warning. X Fader. So X, who's he on the track with? X Fader, featuring Rumu Hans. Okay, let's do it. Let's go. Always here to support, man.
5: Radiation, the number one station for the boggle of Asian. Boggle Asian.
6: One time.
7: You better be looking behind you when you walk.
8: Do it!

0: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का वक्त खत्म हो चुका है। इस मुकदमे का फैसला अगले महीने की 18 तारीख को सुनाया जाएगा।
1: ओह, मेरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली तुमने?
2: तुम भी कातिल, हम भी कातिल। अब वक्त जाया मत करो, अपने जिस्म को इन कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। तुम्हारी जवानी की किताब को करीब से पढ़ना चाहता हूँ।
3: रेडिएशन, द नंबर वन स्टेशन फॉर द पागल एशियन। पागल एशियन,
4: व्हाट द, यू ऑलवेज से no one has sent in or referenced a line more pervy or lecherous than that one. That's what I'm trying to say. And you know, you can go to the Punjabi butchers, whatever it is, if you eat meat in a restaurant, and you know there's always someone horny there, yeah? Right at the end, like, they're looking over at, oh, looking at your girlfriend, whatever it is, man, this is too much. Anyway, Mukaddama, Jazzy B, Sukhchindra Shinda, Local Attraction. And Radiation, the number one station for the Asian invasion. Let me hit you with this, yeah. Brain is fully firing up. It's Diary by Badam. Here we go.
3: Radiation, the number one station for the Pagal Asian.